0: जहां पे सिर्फ सिंगल गांव है उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहां नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है, हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

रिया, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इसे सुन रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशिरेखा, क्रिस्टल वॉइस। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक और जनसेवा जीवन के 25 साल पूरे होने पर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान की बात करूं तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ये चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को देश सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की लंबी यात्रा माना जाता है और इन्हीं 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और हर नागरिक को भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद प्रधानमंत्री के योगदान और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना भी है। तो आज इन योजनाओं के अंतर्गत बात करूंगी मैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस योजना के दो खास हिस्से हैं जिनमें शामिल है ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन। बात करूं अगर ग्रामीण आजीविका मिशन की तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और इसका लक्ष्य गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें स्थायी आजीविका और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें लखपति दीदी पहल भी खास बल दिया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और अगर बात करूं शहरी आजीविका मिशन की तो इसे शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को कौशल विकास के अवसर देना, स्वरोजगार के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना और शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाना है। इन दोनों ही योजनाओं के लिए, इन दोनों ही भागों के लिए जो पात्रता मानदंड है और आवेदन प्रक्रिया है वो अलग अलग है। अगर मैं बात करूं दीनदयाल अंत्योदय योजना में ग्रामीण योजना की तो ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को, खास तौर से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना इसके लिए जरूरी है और बंधुआ मजदूर, महिला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह और दिव्यांग परिवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। स्वयं सहायता समूह यानी SHG कम से कम 6 महीने से सक्रिय रूप से काम कर रहा हो।

अगर आप इसके अंतर्गत पात्रता चाहते हैं तो समूह पंचसूत्र की अगर बात करें तो इसका पालन करता हो। आवेदन की प्रक्रिया की बात करूं तो ये ऑफलाइन प्रक्रिया अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए बता दूं, ग्रामीण गरीब परिवार अपने नजदीकी ब्लॉक विकास कार्यालय या स्थानीय NRLM मिशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने गांव या क्षेत्र के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों से मिलकर समूह में शामिल होने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपका SHG समूह लोन के लिए पात्र है तो सरकारी जनसमर्थ पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन पात्रता की जांच और ऋण की प्रक्रिया को आप शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसी योजना में शहरी योजना की, तो ये योजना शहरी क्षेत्र के गरीबों को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए लोन देने का काम करती है। आवेदक शहरी क्षेत्र का गरीब निवासी होना चाहिए। स्वरोजगार या लोन के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई शहरी गरीब समूह में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उस समूह में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए और 70% सदस्य शहरी गरीब परिवारों से होने चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके तहत फ्री स्किल ट्रेनिंग के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों या फिर ना भी पढ़े लिखे हों तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। निर्माण श्रमिकों और कुछ और भी कैटेगरीज को इसमें खास प्राथमिकता मिलती है। आवेदन करने के लिए शहरी लाभार्थी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक NULM पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आप अपने शहर के नगर निगम या स्थानीय शहरी निकाय कार्यालय में जाकर NULM सेल के अधिकारियों से फॉर्म ले सकते हैं और कर सकते हैं। अब दस्तावेज क्या चाहिए इसके लिए ये भी बता दूं, आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल कुछ भी, या फिर और साथ ही आपको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, PPL कार्ड या पारिवारिक आय का प्रमाण, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ। ये सब अगर आपके पास है तो फिर आप इस योजना से जुड़ने के लिए आगे आ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन एक खूबसूरत गीत आपको सुना रही हूँ और उसके बाद क्या है जरूर बताऊंगी। जुड़े रहिएगा 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो वक्त तो बहुत कम बचा है आपसे बातें करने का, आज मुझे थोड़ा वक्त कम मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से जुड़ेंगे 10:30 बजे। लेकिन जाते जाते एक चीज और एक गीत आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। कहते हैं संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। जहां शब्द असफल हो जाते हैं, संगीत वहीं समझ आता है, या यूं कहें कि जहां शब्द काम नहीं करते वहां संगीत काम करता है। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा, मन और पंख देता है और कल्पनाओं को उड़ान देता है। सागर की तरह होता है ये, आप इसमें एक बार डूब जाएं तो फिर आप इसी में गोते खाते रहेंगे। सफर में संगीत हो तो सफर और भी सुहाना हो जाता है। और जीवन का एक और मंत्र अगर मैं कहूं तो वो ये है कि जीवन एक संगीत है और हर परिस्थिति में आपको इसे गुनगुनाते रहना चाहिए, है ना। तो चलिए, गीतों के साथ साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर तो आप जुड़े ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इस प्यारे से गीत के साथ मैं रेखा लेती हूँ इस सफर से विदा, लेकिन फिर से मिलूंगी 10:30 बजे लेकर दिल का मेल बॉक्स, जहाँ आपकी पसंद के गीत आप तक पहुँचाऊंगी। तो म्यूजिकल दिल लगी में इतना ही, फिलहाल ये गीत आपके लिए। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, वर्ल्ड न्यूज, विश्व दर्पण, बहुत कुछ है। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और इसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4वां संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरूआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi said that Viksit Bharat can be realized only with contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. During the interaction, these Yatris shared their personal experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to use their Yatra to make people aware of various government schemes.
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy.
3: Now when we negotiate, we are looking for fair, equitable and balanced agreements. We start from the Viksit Bharat 2047 story. Today when we negotiate with the world, we put them to notice that we are a $4 trillion economy, but on a PPP basis, we already are a $20 trillion economy, the third largest in the world. That gap is going to get bridged. And with this fastest growing large economy, we will be a $30 trillion economy.
1: The 4th edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief

0: Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. Themed Ultimate Sourcing begins here. The exhibition will continue till 29 September, connecting the state's entrepreneurs, manufacturers and exporters directly with the global market. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labeling or marketing. Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has said that Iran has offered a seven-day plan to end the conflict in West Asia, reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program, according to a report of New York Times. Mr. Araghchi said the proposal was conveyed to the United States through intermediaries and included certain conditions under which the Strait of Hormuz would reopen by the seventh day and nuclear talks would restart. He reiterated Iran's commitment to diplomacy while accusing the US and Israel of military aggression against Iran and criticizing European countries for failing to address alleged violations of international law. Iranian President Masoud Pezeshkian separately blamed US President Donald Trump for the failure to implement an agreement reached in June this year, saying Tehran remains ready for dialogue. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. According to the weather agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana for the day. In Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today, while the Indian shooting trio of Rudraksh Patil, Aishwarya Pratap Tomar and Neeraj Kumar won silver in the men's 50-meter rifle three-positions team event today. Defending champions, India held Azerbaijan to a 2-2 draw in the eighth round of the FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Mukesh Kumar Bal. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. आपसी संबंध, क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई. भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझाने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपना स्पष्ट और निरंतर समर्थन दोहराया. ब्रिक्स रंगमंच महोत्सव 12 अक्टूबर से नई दिल्ली में. भारत, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका समेत 9 देश प्रस्तुतियां देंगे. चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में. जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में आपसी संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई. एक रिपोर्ट.
2: डॉक्टर जयशंकर ने दिन की शुरुआत एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ बैठक से की. दोनों नेताओं ने भारत के विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की. इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय के प्रमुख जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा से मुलाकात की. डॉक्टर जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती और जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमन सफादी के साथ पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर चर्चा की. ब्रिटेन विदेश सचिव एड मिलबैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों और संघर्षों के बीच खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ. उन्होंने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ भी क्षेत्रीय घटनाक्रम और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की. डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर पेनी वोग, उरुग्वे के राष्ट्रपति

0: व्यक्ति यामांडू ओरसी, मालदीव की विदेश मंत्री इरुथी श्याम आदम, घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अबालोक्वा, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन और एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साकाना के साथ भी बैठकें की। विश्व दर्पण समाचार के लिए अलका सिंह।
1: भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी जोर देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास मॉडल जन केंद्रित और समावेशी है तथा सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि विकास केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की क्षमता बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने से भी जुड़ा है। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस की सह मेजबानी में आयोजित सुधारात्मक न्याय से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों के प्रति भारत की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए श्री जॉर्ज ने समावेशी विकास, वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया में शांति, लोकतंत्र, विकास और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशों के बीच विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। उन्होंने निशस्त्रीकरण और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए बांग्लादेश के समर्थन की बात कही। रोहिंग्या संकट पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में रह रहे 12 लाख से अधिक रोहिंग्याओं की सुरक्षित और स्थायी म्यांमार वापसी में सहायता करने की अपील की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स थिएटर महोत्सव 12 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। 3 दिन के इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कर रहा है। नई दिल्ली में संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि साझा कहानियां, साझा भविष्य विषय पर आधारित ये महोत्सव विविध नाट्य परंपराओं को रेखांकित करने और साझा मानवीय अनुभवों को उजागर करने का एक प्रयास है।
3: 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में हो रहा है। 5 वेन्यूज हैं और नौ ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 11 प्रोडक्शंस दिखाई जाएंगी और ये प्रोडक्शंस के साथ जो प्लेज होंगे उसके साथ साथ वर्कशॉप्स भी होंगी। और ये जो थिएटर फेस्टिवल है ये थिएटर लवर्स के लिए ओपन रहेगा और इसकी टिकट सेल बुक माय शो पे होगी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे होगी।
1: उन्होंने कहा कि ये महोत्सव पिछले महीने आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में अपनाई गई भोपाल घोषणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में 100 से अधिक कलाकारों के भाग लेने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने बताया कि इस महोत्सव में 10 नाट्य समूह

0: एग्जीक्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तत्वावधान में उनके गाइडेंस के साथ हम ये कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है क्योंकि इतने सारे डेलीगेट्स बाहर से आएंगे, उनका अतिथि सत्कार हो और जो क्रिएटिव काम वो करने आ रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो, उनके जितने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो ये सब हम एनएसडी के सारे लोग जो है काफी श्रम के साथ मन के साथ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा होगा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
2: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बहाल करने के लिए 7 दिन का प्रस्ताव दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार श्री अराक्ची ने बताया कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया गया है। और जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जोड़ी ने फाइनल में 484.6 का स्कोर किया। वहीं पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय शूटिंग तिकड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया है। वहीं टेबल टेनिस में भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ भारत ने एशियाई खेलों में टेबल टेनिस का पहला पदक भी अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 19 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझाने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के प्रति अपना स्पष्ट और निरंतर समर्थन दोहराया। ब्रिक्स रंगमंच महोत्सव 12 अक्टूबर से नई दिल्ली में। भारत, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका समेत 9 देशों के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और मौजूदा चैंपियन भारत का समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meetings with global leaders on the sidelines of UN General Assembly in New York, discusses bilateral ties, regional developments and global challenges. India reaffirms its clear and consistent support for two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. BRICS Theatre Festival to be held in New Delhi from 12th of next month. India, Russia, Iran and South Africa among 9 countries to present their theatrical productions. 4th UP International Trade Show to begin today at India Expo Centre and Mart in Greater Noida. India's Suruchi Singh and Kamaljeet win gold medal in 10-meter air pistol mixed team event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. External Affairs Minister S. Jaishankar held a series of bilateral meetings

9886863 पर, यानी 9868686853 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldaiardelhi@gmail.com पर. जी हाँ, fmgoldaiardelhi@gmail.com. और मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पहले से ही पता है, तो उनके मैसेजेस लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं. चलिए जल्दी से उन्हें शामिल कर लेते हैं. मुंबई से अनु बरजातिया, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का हमें मैसेज पहुंचा है. जयराम खोरवाल, सचिन और अमन दीपांशु का हमें मैसेज पहुंचा है. उत्तम नगर होली चौक दिल्ली से. मास्टर अशोक वर्मा, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से. अर्चना, अनुज, आयुषी के साथ और पूरा परिवार है इनके साथ. सुदामा नगर खंडवा से. लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और पूरे परिवार का मैसेज. और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान और पूजा परिहार का. और अफरोज शेख ने नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिखा है. और ये मैसेज विक्रम कनवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव का हमारे पास पहुंचा है. कहां से? गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान से. गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का मैसेज हमें मिला है. मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अपर कोट मोहल्ला चोखुंडी बुलंदशहर से पूरे परिवार के साथ हमें लिख रहे हैं. स्वराज राजकोट से जुली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी का मैसेज. और गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत प्रियम, पूरे परिवार का हमें मैसेज मिला है. नवाशहर पंजाब से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक का हमें. कोल सिटी बरका काना से. और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा का मैसेज. उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खुरवाल, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज और पूरे परिवार का. दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से दिव्यांशु यादव, संजय ढिंगिया, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई हमें लिख रहे हैं. कवि मेरठ, शोभापुर मेरठ कैंट से. और साथ ही हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है बघेरा जिला, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से. योगेश सरवा, आशा सरवा, नीरज, नीलेश और पूरे परिवार का. और डोंडी लोहरा जिला बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव और पूरे परिवार का मैसेज. ये मैसेज हमें बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू का. और शेरवानी स्कूलगंज टुंडवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और पूरे परिवार का मैसेज. उत्तम नगर, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की, सुधासु और नवानंद, सत्यम का हमें झारखंड से, बोहड़ी गांछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का मैसेज. और हमें लिखा है कोमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश का मैसेज. साथ ही गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी का मैसेज भी हमें मिला. सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें लिख रहे हैं. मामूली वाड़ा महाराष्ट्र से, सोपान ताइड़े, पीएस नाहवकर, वसंत राव भोजने, मोहन करांगले का मैसेज. सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा और नाजिया इब्राहिम का हमें. कुमार हेड़ा, सहारनपुर से मैसेज मिला है. अनिल बुरांडे, उषा और अनुश्री, धनश्री का यवतमाल से मैसेज. कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर का हमें. मजनू कटीला से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही का हमें मैसेज मिला. मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन और पूरे परिवार का मैसेज. किदवई नगर से हमें जुबैर अली, सबीहा और अंजुमन खान का मैसेज मिला. साथ में वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर, अजीम खान का मैसेज. गिरधारी लाल अग्रवाल धनबाद झारखंड से हमें लिख रहे हैं. और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना का. शायद ये मैं पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मैंने पढ़ दिया. शेरवानी स्कूलगंज रुणवाना से, बार बार मैसेजेस को मत भेजिए. अगर एक बार आपका मैसेज शामिल हो गया है तो, क्योंकि बार बार फिर वही नाम सामने आते हैं, है ना. अब हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव से. हमें लिखा है साहू, कुलवंती देवी और देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और पूरे परिवार ने. और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़ का
अलोट जिला रतलाम एमपी से, उग्रसेन यादव शकुंतला गरिमा कामे दिल्ली से मैसेज, और अतर सिंह राजकुमारी अनुज अंजलि

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये वक्त हो चुका है 10:31:13 और पता ही है आपको कि ये है दिल का मेल बॉक्स जिसमें आप हमें भेज सकते हैं अपनी फरमाइशें कहाँ भेजनी है व्हाट्सएप कर सकते हैं

डॉक्टर पारुल आधुनिक समय पर दिल्ली से लिख रहे हैं। साथ ही हमारे पास ये मैसेज पंकज मोहड़ का अमरावती महाराष्ट्र से, ओम प्रकाश टेकचंदानी हमें ग्रेटर कैलाश से लिख रहे हैं, मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका का श्रीगंगानगर राजस्थान से, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा राजकुमार बुड़ाना का मैसेज, दिवाकर शेनॉय का मंगलौर से मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता ने नांदेड़ महाराष्ट्र से, सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन मुखी का हमें मैसेज पहुंचा है शांतिनगर सोनीपत से, कस्बागन और यूपी से फारूक अली खान का मैसेज और सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग का मैसेज, रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का मैसेज, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रतेश और प्रितेश और प्रगेश का पूरे परिवार के साथ। और अब इससे पहले कि और नामों को शामिल करूं, ये गीत शामिल करती हूं, इसकी फरमाइश हमें किसने भेजी है, लिखते हैं कहां से, हमें लिखा है सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप और रुद्रांश प्रताप साहू, प्रणय कुमार, मिलिंद कुमार साहू ने इस गीत की फरमाइश भेजी है हमें। और साथ ही हमारे पास ये लिखा है इसी गीत के लिए कहां से, शायद आपका नाम मुझसे गुम हो गया है। वेल, जिस जिसने भी इस गीत को सुनना चाहा है हम उनके लिए इस गीत को बजा रहे हैं। ये रहा देवा ओ देवा इलाका फिल्म से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या

0: नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।

दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप। 10:49:25 हो चुके हैं और जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस को शामिल करने की कोशिश कर रही हूं। फिर भी कुछ मेल्स रह जाते हैं, कुछ मैसेजेस रह जाते हैं, तो नाराज निराश मत हुआ कीजिए, अगली बार जरूर आपका नाम भी शामिल होने की कोशिश होगी। ज्योति मक्कड़, संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक जालंधर से हमें लिख रहे हैं और हमें लिखा है विभोर, वैभव, यश, माधवी, पारुल, विवेक ने बागपत यूपी से, संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया ने उत्तर प्रदेश बागपत से, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमारी, पूजा ने हमें गांव जाखोद राजस्थान से लिखा है, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक का मैसेज, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने हमें प्रणय महापात्रा के साथ अलीगढ़ से लिखा है और वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल, भाटापारा छत्तीसगढ़ से और ये मैसेज हमें मिला है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन का मैसेज, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी तृप्ति का हमें ये ताला महाराष्ट्र से मिला है मैसेज और हमें लिखा है महिंद्र पार्क से कैलाश चंद्र दिनेश ने, बाल पांगड़ा सिवान बिहार से अकबर हुसैन, मोहम्मद कैफ, राबिया खातून का मैसेज, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल का मैसेज और श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई और संचित प्रथमेश सर्वत का हमें मैसेज मिला है कालेगांव जाफराबाद से, हापुड़ उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है हरेंद्र खाती और पूरे परिवार ने, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद का मैसेज।

भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु संस्कृति पौरुष का हमें व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, सतीश अनेजा बिमला अनेजा चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, शाहरुख फारूक शबनम खान शाहनाज श्रोता नजफगढ़ जय विहार से लिख रहे हैं, और संजय पाटिल उषा पाटिल प्रथमेश निवृत्ति का शीरसागर से नसवाला चौक मलकापुर से मैसेज मिला है। साथ ही हमारे पास मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा और शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक और पूरे परिवार का मैसेज मुंगी सापुर बाजार रोड से मिला है, और बस्ती नई बस्ती गंजुनवाना से मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम तौसीफ तैमूर कली मंसारी का मैसेज, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर मिराज जहां का मैसेज हमें लक्सर हरिद्वार से मिला है, सतप्रकाश गोयल रोहिणी से हमें लिख रहे हैं, कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल जयवीर सिंह और अमनदीप का मैसेज, अनिल ठाकुर रीना ठाकुर सराय कालेखान दिल्ली से लिख रहे हैं, रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान का हमें मैसेज हनुमानगढ़ टाउन से मिला है, मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेखे शगीर शेख वजीर शेख सोहिल शेख सैयद तैमूर और शामीर खान का हमें मैसेज पहुंचा है, और हमें लिखा है निसार सलमानी नौशाद सलमानी ने उत्तराखंड तेलीवाड़ा से ये मैसेज हमें लिखा है राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी और पूरे परिवार ने मालो पंजाब से, और आपके जो मैसेजेस हैं जो नाम है उन्हें थोड़ा सा क्लियर अगर आप लिखा करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होती है उन्हें पढ़ने में, वरना आपके नाम बहुत मुश्किल से पढ़े जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा मैसेज शामिल कर लेते हैं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है इस गीत को मामूली वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े पी एस नाहवकर वसंतराव भोजने और मोहन करांगले ने ये गीत सुना चाहा है, और साथ ही हमारे पास आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी शेरवानी स्कूल गंजरुणवारा से आलिया अंसारी के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो ये रहा आपके लिए ये गीत।

0: और अब वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन जल्दी से कुछ और नामों को शामिल कर लेती हूँ। हमें संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत और कमल साहनी पिंगावाला चौक से लिख रहे हैं। विभोर, वैभव, यश, माधवी, पारुल, विवेक का हमें बागपत यूपी से मैसेज मिला। और साथ ही हमारे पास शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमारी, पूजा का मैसेज मिला है। और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है हिंगनी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। और हमें लिखा मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून ने कहां से, मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से। और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलिस का जनकपुरी सहारनपुर से, भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीत, रुद्र का हमें दत्तरेंगी से। बस अब वक्त नहीं बचा है, फिलहाल के लिए इजाजत लूंगी। 11:10 पर फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष

0: देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के सात सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस करता है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का भी आग्रह किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों को बनाने और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एनालॉग पनीर का अर्थ है कि जो वास्तविक दूध के बजाय अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उत्तरी क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों के कामकाज और प्रसारण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के सामने आ रही समस्याओं को समझना, उनकी प्रतिक्रिया लेना और समस्याओं के समाधान तलाशना है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said that Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
3: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है, ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
1: 9 महीने तक जो हर पीड़ा को चुपचाप सहती रहे, तोड़ मरोड़ कर खुद को बस औलाद के खैर चाहती रही, जब पेट में लगती ठोकर वो उफ तक न करती थी, अपनी रातों की नींदें बेचकर वो हम पर जान छिड़कती थी, खुद गीले बिस्तर पर सोकर हमें सूखे पर सुला

0: आती रही, सबके ताने सुनती थी, पर कभी उफ तक न की उसने।
1: जब कभी बीमार पड़े हम तो वो रात भर जागती रही, ईश्वर से पहले बस हमारे लिए ही दुआ मांगती रही। इस मतलबी दुनिया में सिर्फ वही है जो हमको संवारती है, उसके इस मौन त्याग का मोल कोई कैसे चुका पाएगा। माँ के बिना ये सूना घर और ये संसार कभी ना आबाद हो पाएगा।
0: लेकिन कमाल की बात है कि आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे और किसी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी किसी दूसरे की माँ की बेइज्जती करने में कोई देर नहीं लगाते। माँ शब्द और किसी की माँ की बेइज्जती करने वाले ऐसे लोगों को
1: क्या खुद को इंसान कहलाने का हक होना चाहिए? गुस्से में भी किसी की माँ को अपशब्द बोलना, उनका तिरस्कार करना, क्या सभ्य समाज की यही पहचान है? अगर नहीं तो फिर हमें ऐसे लोगों का विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है।
0: अगर हम अपनी माँ को सम्मान दे सकते हैं तो दूसरे की माँ को भी सम्मान देना ही चाहिए। मान दो उस मूरत को जो जीवन का आधार है, इस सृष्टि के कण कण में बस माँ का

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने एक खबर देखी जिसमें एक लड़का अपनी 84 साल की माँ को बुरी तरह से मार रहा था। ऐसी ही एक खबर ये भी थी कि एक लड़के ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को रात के अंधेरे में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो उसको दो वक्त की रोटी भी नहीं खिलाना चाहते थे।
4: सुनने में तो एक बार ये भी आया था कि एक बहुत बड़े ज्वेलर ने जब अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया तो उसकी माँ एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए मिली। वो तो भला हो किसी ऐसे शरीफ आदमी का जिसने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया
3: और फिर समाज के साथ मिलकर उस लड़के को मजबूर किया कि वो अपनी माँ को इज्जत के साथ घर में रखे। कभी कोई बेटा अपनी माँ को संपत्ति के लिए परेशान करता है तो कहीं कोई बेटा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में अपनी माँ को दुश्मन मान लेता है।
4: कहते हैं कि जब भगवान ने इंसान बनाया तो देवलोक में सब

0: सवाल उठा कि भगवान, इंसान तो आपने बना दिया, मगर इंसान को सही में इंसान बनाने के लिए प्रेम और ममता का पाठ कौन पढ़ाएगा? तब भगवान ने इस दुनिया के लिए माँ को बनाया। इसीलिए संसार में माँ के महत्व को ईश्वर के बराबर समझा जाता है।
1: चलती फिरती हुई आँखों से आजादी देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी,

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप इसे सुन रहे हैं, 11:25 और 54 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। लेकिन अभी आज हम कहाँ जा रहे हैं ये भी तो बता दूं। आज तस्वीर के सफर में हम चलेंगे असम के दिसपुर। ज्यादा देर नहीं करा रही हूँ, इंतजार भी नहीं, बस सीधा निकलते हैं इस यात्रा पर जल्दी से। सुंदर और मनोरम दृश्य के साथ दिसपुर असम की राजधानी है और ये गुवाहाटी के तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। दिसपुर से पहले असम की राजधानी शिलोंग थी। 1973 में जब मेघालय असम से अलग हुआ तो मेघालय की राजधानी शिलोंग और असम की राजधानी दिसपुर हो गई। शहर में कुछ खास इमारतें हैं जैसे असम सचिवालय, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और असम विधानसभा भवन। दिसपुर में शिल्पग्राम, असम स्टेट एम्पोरियम, असम स्टेट जू, बोटेनिकल गार्डन और वशिष्ठ आश्रम जैसे पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, ऐसे स्थान भी हैं जहां पर आप जा सकते हैं। दिसपुर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर आयोजित होती है, ऐसे अलग अलग चाय नीलामी बाजारों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पड़ोसी शहर गुवाहाटी की छत्रछाया में बना हुआ है ये, और

यहाँ के निवासियों में आर्यन तिब्बती और बर्मी मूल के लोग शामिल हैं और अपनी संस्कृति और विरासत में बहुत ही अच्छा गहरा विश्वास रखते हैं। बिहू त्योहार यहाँ भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है असमिया, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी सामान्य तौर पर यहाँ बोली जाती है। दिसंबर का मौसम गुवाहाटी जैसा ही है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय और यहाँ कैसे आपको पहुंचना है, क्या कुछ खास है यहाँ पर, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा इस सफर में मेरे साथ, जिसे कहते हैं हम तस्वीर। और आज तस्वीर दिसंबर की, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, गीतों के इस सफर में चलते रहेंगे, गाते गुनगुनाते ऐसे ही आ

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु

0: प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

11:30 और 29 सेकंड हो चुके हैं और हम निकले हैं आज दिसपुर की यात्रा पर। तो भाई आपको मैं बता रही हूँ कि दिसपुर में ऐसा क्या खास है जो हमें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। असम राज्य एम्पोरियम एक क्राफ्ट स्टोर है। यहाँ पर एम्पोरियम जो है वो असम की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है और ये पारंपरिक असमिया वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। इस एम्पोरियम में आप जापी यानी बांस से बनी चूड़ी टोपी जो कि पहनने के लिए होती है, एक तरह का यहाँ पर पहने जाने वाला एक खास तरह की टोपी होती है जो असम में पहनी जाती है, जुराई जो पीतल से बने जिसमें माउथ फ्रेशनर्स रखे जाते हैं, बोटा पीतल और चांदी से बना, अक्सर आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लकड़ी से बनी दस्तकारी जैसे सुंदर हस्तशिल्प की वस्तुएं आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप बेत और बांस से बने घरेलू सामान भी यहाँ पर पा सकते हैं। रेशम और कपास से बने मेखला चादर और बाकी असमिया पोशाक, असम के पारंपरिक आभूषण भी इस जगह पर काफी अच्छे रेट्स पर मिल जाते हैं। तो आपको इस एम्पोरियम में एक बार जरूर जाना चाहिए अगर आप असम जा रहे हैं और असम की यादों को संजोकर अपने साथ लाना चाहते हैं। एक जगह है सुहालकुची, दिसपुर का एक छोटा सा गांव है जो असमिया परंपराओं और संस्कृतियों को उनके सर्वोत्तम रूप में प्रदर्शित करता है। ये गांव रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और ये राज्य में सबसे अच्छे प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है, इसलिए इस गांव को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये गांव गुवाहाटी से करीब 35 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है और ये असम के कामरूप जिले में एक जनगणना शहर है। सुहालकुची असम का कपड़ा केंद्र है और वो मुगा रेशम, पैट रेशम, एरी रेशम और एंडी कपड़े की अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन और यहाँ पर काम किया जाता है। रेशम के इन गुणों से बने मेखला चादरें और गामोसे की बहुत ज्यादा ही अच्छी गुणवत्ता के यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मिट्टी से ढके बांस के घर और दीवारें इस छोटे गांव की खासियत है और यहाँ पर एक दृश्य ऐसा दिखता है जिसे बिल्कुल देहात जैसा यहाँ पर महसूस होता है। सुहालकुची एक ऐसा क्षेत्र है जो पारिस्थितिक रूप से विविध है और वनस्पतियों और जीवों में भी समृद्ध है। ये गांव न सिर्फ स्थानीय विदेशी जानवरों पक्षियों का निवास है बल्कि प्रवासी पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है और इस गांव में आपको हर कदम पर मंदिर, मठ और नामघर देखने को मिलेंगे। ये गांव एक कंप्लीट टूर पैकेज की तरह से आप अगर देखेंगे तो यकीनन आपको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो एक टूरिस्ट चाहता है। चारों ओर से फैली हरी भरी पहाड़ियों से सजा सुहालकुची का जो नजारा है वो सचमुच दिल जीत लेता है और शांति तो यहाँ पर सचमुच बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने दैनिक जीवन से थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं और असम की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में टुबकी लगाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। धार्मिक और ऐतिहासिक आकर्षणों से भी भरपूर है दिसपुर। यहाँ के इन पर्यटन स्थलों की तरफ आप जा सकते हैं जिनकी अब मैं बात करने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ तो असम की राजधानी दिसपुर मनोरम नजारों, अनूठी परंपराओं और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से भरपूर है और इसलिए ये राज्य एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। शहर में कई प्राचीन हिंदू मंदिर हैं जो बड़ी संख्या में आध्यात्मिक प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इसके अलावा ये वनस्पतियों और जीवों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला से भी समृद्ध है। तो अगर मैं कहूं यहां पर आपको असम राज्य का जो संग्रहालय है वहां जरूर जाना चाहिए। यहां पर आपको राज्य की समृद्ध संस्कृति, अतीत सब कुछ

देखने को मिलेगा। इसके दक्षिणी छोर पर दिघाली पुखुरी में स्थित है ये असम के, और इस संग्रहालय में कुछ संग्रह प्रागैतिहासिक काल से हैं। असम राज्य संग्रहालय के संग्रह में मूर्तियां, लकड़ी का काम, शाही परिवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वस्त्र, हथियार, पेंटिंग, बर्तन, पत्थर और तांबे से बने शिलालेख और बहुत कुछ शामिल है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध की यादें भी समेटे हुए हैं, तो आपको ये सब यहां पर जरूर देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं बोटैनिकल गार्डन की, तो ये भी 432 एकड़ में फैला हुआ है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा चिड़ियाघर आप इसे कह सकते हैं। साल 1957 में स्थापित चिड़ियाघर में 1982 में एक वनस्पति उद्यान जोड़ा गया, और इस चिड़ियाघर में जानवरों में सफेद बाघ, गैंडा, तेंदुआ, हिमाली काला भालू शामिल है। वनस्पति उद्यान में फूलों, पौधों, जड़ी बूटियों के साथ साथ झाड़ियों की भी एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए यहाँ आपको अपने परिवार के साथ यात्रा जरूर करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह भी, और भी कुछ खास है इस जगह पर देखने के लिए जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो भाई, आज आप और हम निकले हैं असम के दिसपुर की यात्रा पर, और यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए ये मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर आगे की यात्रा में बढ़े, मैं आपको पहले बता दूं कि हम जुड़े हैं तस्वीर के सफर में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, और 11:43:48 हो चुके हैं। ये मंदिर जो जिसकी बात अब मैं करने जा रही हूँ, इसे उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित है और नदी द्वीप के पास स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अहोम के राजा ने मनमोहक ब्रह्मपुत्र द्वीप पर करवाया था, जिसे मोर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये जगह बहुत ही शांति से भरी हुई है, खूबसूरत है देखने के लिए, जरूर आपको यहाँ पर जाना चाहिए। कामाख्या देवी मंदिर भी है जो दिसपुर के पास गुवाहाटी के से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। असम की राजधानी दिसपुर में लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है, और इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउला और बसंत पूजा, मदान देउल, अंबुबाची और मनासा पूजा इस मंदिर में खास तौर पर मनाए जाते हैं। यहाँ इनकी रौनक देखते ही बनती है, और हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। ये मेला जून में लगता है, और ये मेला उसी दौरान लगता है जब माता रजस्वला होती है, और इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन बाहर काफी बड़ा मेला होता है। तो आपको जरूर इस जगह के भी दर्शन एक बार करने चाहिए, क्योंकि अपने आप में असम के लिए ये खास जगह है जहां पर लोग पहुंचते हैं और इसे जरूर देखते हैं। अगर मैं बात करूं आगे और ऐसे कौन कौन से जगह है, प्लेसेस हैं, तो फिर आपको बता दूं कि ये वशिष्ठ आश्रम है कि यहाँ पर, जहाँ आप जा सकते हैं, और यह आश्रम संध्या, ललिता और कांता नदियों के संगम पर स्थित है, और ये तीर्थ स्थल है। एक किंवदंती के मुताबिक नदियों को ये नाम ऋषि वशिष्ठ की 3 पत्नियों के नाम पर मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, और यहाँ अक्सर तीर्थयात्री आते हैं। आश्रम में बना वशिष्ठ मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण राजा राजेश्वर सिंह ने करवाया था। और भाई, अगर असम जा ही रहे हैं तो इन सब चीजों को ना मत भूलिएगा। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी, उमा या फिर उमानंद मंदिर या बोटानिकल गार्डन, और इसके अलावा असम राज्य का संग्रहालय, बहुत कुछ तो है यहाँ पर देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर सुंदर नजारे जो आसपास आपको नजर आएंगे, जो प्रकृति के साथ आप यहाँ जाकर जुड़ पाएंगे, वो अपने आप में खास है। और भी कुछ बताऊंगी इस जगह के बारे में, लेकिन इस गीत के बाद।

तो भैया, अब मैं आपको बता दूं कि दिसपुर पहुंचना कैसे है। तो अगर आप दिसपुर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर असम की राजधानी दिसपुर पहुंचने के लिए हवाई, रेल या सड़क, तीनों मार्गों से आप यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से यहां पहुंचना चाहें, बाय एयर यहां पहुंचना चाहें, तो दिसपुर के सबसे नजदीक लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो गुवाहाटी में है। यहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है और यह हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जैसे सभी प्रमुख महानगरों से सीधी उड़ानों से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आप टैक्सी या कैब लेकर सीधे दिसपुर पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप यहां पहुंचना चाहें तो दिसपुर का अपना कोई खास रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके सबसे पास गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, जो यहां से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। गुवाहाटी स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का बड़ा मुख्यालय है, जो देश के बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु आदि से नियमित एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। आगे रेलवे स्टेशन से दिसपुर जाने के लिए लोकल बसेस, ऑटो रिक्शा या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। अगर आप बाय रोड यहां पहुंचना चाहें सड़क से, तो फिर दिसपुर जीएस रोड और असम ट्रंक रोड के जरिए गुवाहाटी और आसपास के बाकी शहरों से बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड है। और बस या टैक्सी की बात करूं तो असम राज्य परिवहन निगम और निजी बसें गुवाहाटी से दिसपुर के लिए लगातार चलती हैं, यहां की बसेस, और आप स्थानीय कैब सेवा की मदद से भी आसानी से कम समय में दिसपुर पहुंच सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां के त्योहारों की, तो यहां का सबसे प्रसिद्ध और जीवंत त्योहार बिहू यानी रोगाली, कोंगाली और भोगाली बिहू है, जिसमें पारंपरिक बिहू नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक असमिया वेशभूषा मेखला चादर जिसे कहा जाता है, इसका खास प्रदर्शन किया जाता है। यहां के निवासियों में खासतौर से आर्य, तिब्बती और बर्मी मूल के विभिन्न जातीय समूह शामिल है। यहां की मुख्य भाषा असमिया है, जबकि हिंदी, अंग्रेजी भी यहां बोली जाती है। खान पान की बात करूं तो भोजन में चावल, मछली और बांस के कोपलों से बने पारंपरिक व्यंजन यहां पर शामिल होते हैं। आपको अगर

जायका लेना हो यहाँ के लोकल फूड का तो आपको जरूर इन्हें एक बार टेस्ट करना चाहिए। कला और शिल्प की बात करें तो ये क्षेत्र उत्कृष्ट रेशम बुनाई, पाट और मुगा सिल्क के लिए, पारंपरिक आभूषणों और बांस बेंत के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। तो आप अगर अपने घर के लिए कोई सामान लाना चाहें तो इनमें से कुछ जरूर लेकर आइएगा। संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए यहाँ श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक केंद्र स्थित हैं जो असमिया कला, नाटक और संगीत को बढ़ावा देते हैं। तो आपको एक बार जरूर इनको भी देखना चाहिए, यहाँ के नाटकों को, कला को और संगीत से भी यहाँ जुड़ना चाहिए। तो बहुत कुछ है असम के इस यात्रा में, अगर आप चाहें तो दिसपुर जब भी चाहे जरूर असम की बहुत सारी चीजों को जानने का, समझने का मौका आपको मिलेगा। कभी भी जब मौका मिले निकल चलिए। फिलहाल तो मुझे मौका मिला है एक प्यारे से गीत को आप तक पहुंचाने का, तो चलिए ये प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूँ और उसके बाद आगे सफर में क्या है जरूर बताऊंगी।

0: तस्वीर के सफर में तो आज इतना ही, लेकिन फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। आज के लिए आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए।
1: कहाँ चली चली चली, कहाँ चली चली चली,
2: तुम कौन हो तू रोको मेरा रास्ता।
1: ए जी हम तेरे दीवाने, तू जा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप

0: विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
0: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
2: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among women of the country has also increased. And Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today launched the Capacity Enhancement for Effective Forest Management Project to support forest conservation practices. Addressing the inaugural session of the project launch in New Delhi, he said the project will promote innovation and the creation of more facilities in state forest institutes. Mr. Yadav said this project has been launched with an outlay of approximately 537 crore rupees with the objective of providing the forest

0: ஆண்கள்.
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आज है शुक्रवार और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित होता है हमारे बुजुर्गों को, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। और जब बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं। हमारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि तुम असमर्थताओं में नहीं संभावनाओं में घिरे हैं, हर दीवार पे द्वार

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नीला आकाश और आवाज़ लता और रफ़ी की। आज है 25 सितंबर, जिसे हम सब मना रहे हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। इसमें अंत का अर्थ है सबसे अंतिम या पिछड़ा हुआ व्यक्ति, और उदय का अर्थ है उत्थान, यानी जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता, तब तक राष्ट्र की प्रगति का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी गगनचुंबी इमारतें नहीं, बल्कि अंतिम कतार में खड़ा वो अंतिम व्यक्ति ही होता है। ये समावेशी और क्रांतिकारी विचार थे महान मनीषी और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनकी जयंती आज हम सब मना रहे हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। और इसके मूल में है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर हमारे पैर के छोटे से अंगूठे में भी चोट लग जाए तो दर्द पूरे शरीर को होता है, वैसे ही हमारा समाज भी है। अगर समाज का एक भी हिस्सा, एक भी गरीब भाई बहन अभाव में है तो हमारा देश पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी कैसे हो सकता है। इस महान विचार को भी दुनिया के समक्ष रखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जिन्हें विश्वास था कि मनुष्य का विकास केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि उसके मन, बुद्धि और आत्मा के संतोष से होता है। और यह संतोष तभी मिलेगा जब आर्थिक प्रजातंत्र आएगा। तो ऐसी महान विभूति को आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, और साथ में ये संकल्प भी लेते हैं कि हमारे आसपास जिन्हें भी हमारी जरूरत होगी उसकी हम मदद करेंगे, और उसे आगे बढ़ाने में हमसे जो भी संभव हो सकेगा हम उसे करेंगे, और तभी होगा।

आकाशदीप, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। और आज है अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश विसर्जन की तिथि। 10 दिनों से भगवान गणेश के आगमन के हर्षोल्लास में हम सब डूबे हुए थे, लेकिन आज भारी मन से उन्हें विदाई दे रहे हैं। भले ही बप्पा के मूर्ति रूप को आज हम विसर्जित करेंगे, लेकिन हमारे मन में, हमारे हृदय में उनका निवास सदैव है और रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ कि बप्पा को हम विदा तो दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम सब मिल करके कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी इलाका और आवाज़ आशा भोसले और किशोर कुमार की। और अब बात जापान में चल रहे एशियन गेम्स की, जिसने हमारे देश में अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है और विशेषकर हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन तो हमें गर्व से भर ही देता है। महिला खिलाड़ियों ने महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक समेत

कई पदक अपने नाम किए हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो शूटिंग में इलावेनिल वलारिवन, वुशु में रोशेबीना देवी और वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर इतिहास ही रच दिया। इसी तरह कांस्य पदक लाने वाली महिला खिलाड़ियों की बात करें तो सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीता, सुचिका तरियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में और महिला स्किट टीम शूटिंग में परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान की टीम ने मिलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तो भाई हमारे खिलाड़ी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करते रहें और हमारे देश में पदकों की बरसात यूं ही होती रहे, हम सब लोगों की यही शुभकामनाएं हैं।

जीने की राह। अभी इस फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में। और अब बात प्रधानमंत्री मानधन योजना की। ये योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो असंगठित क्षेत्र जैसे रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और खेतिहर मजदूर, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ये योजना उन श्रमिकों को एक औपचारिक पेंशन ढांचे के तहत लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के विकास में उनकी भागीदारी का सम्मान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये पेंशन प्रदान करने वाली एक स्वैच्छिक और अंशदायी सरकारी योजना है जो ये सुनिश्चित करती है कि श्रमिक जब शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो जाएं, यानी 60 वर्ष की आयु के बाद, तब भी उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती रहे ताकि वे स्वाभिमान से जी सकें। इसमें आवेदन के समय श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलती है और लाभार्थी के इस दुनिया से जाने के बाद उसके जीवन साथी को भी 50% यानी कि 1,500 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। इस योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, पासबुक या जनधन खाता और चालू मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के साथ आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और इससे संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मानधन पोर्टल योजना पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तेरे घर के सामने। और अब बात स्वास्थ्य की कर ली जाए तो जिसका सीधा संबंध होता है जीवन शैली और खान पान से, इसीलिए सही जीवन शैली और आहार अपनाना बहुत आवश्यक है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में शरीर को सही देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। वैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित और नियमित करना है। सबसे पहले अपने शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है और इसके लिए भारी वर्कआउट नहीं, बस सुबह शाम 20 से 30 मिनट की हल्की सैर, क्योंकि नियमित वॉक और योगासन से जोड़ों का दर्द भी कम होता है और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है, जिससे गिरने या फ्रैक्चर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसी तरह आहार पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलित और सुपाच्य आहार लें, जिसमें फाइबर, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, जैसे दलिया, खिचड़ी, हरी सब्जियां, दालें, हल्के सूप और जो पचने में आसान हो। नमक, चीनी और ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन से तो भाई दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि सुपाच्य भोजन और पर्याप्त पानी पीने से कब्ज, गैस और अपच जैसी बुढ़ापे की जो आम समस्याएं हैं उनमें भी इससे राहत मिलती है। साथ ही तेल मसाला जो कम खाते हैं और हल्की सैर करते हैं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण भी इससे रखा मतलब मिलता है, उससे नियंत्रण होता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो बुजुर्गों के लिए 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और शरीर की इम्यूनिटी जो इससे बढ़ती है, बुजुर्ग मौसम बदलने पर जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसी तरह प्राणायाम, ध्यान और अपनों से बातचीत करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिमेंशिया आदि जानी मतलब भूलने की जो बीमारी होती है वो खतरा भी इसका कम हो जाता है। इसके साथ ही बुजुर्गों को सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए हम उम्र दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे जैसे पार्क में जाएं, किसी कम्युनिटी क्लब से जुड़ें और अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए घर में भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे शतरंज खेलना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद है।

मेरे सनम, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और बात करें अगर सीखने की, तो सीखना सिर्फ स्कूल की किताबों या कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है और ऐसा सफ़र है जो कि पैदा होने के साथ ही हमारे शुरू होता है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक चलता रहता है। ज़िंदगी में मिली असफलताएं, गलतियां और अनुभव हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं, इसलिए सीखना या सीखते रहना ज़रूरी है, चाहे उम्र कोई भी हो। नया हुनर, नई भाषा, जीवन को जीने का नया नज़रिया हमेशा आपको युवा बनाए रखता है। और वो कहते हैं ना कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन सर, आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि सीखने की उम्र नहीं रही। ऐसा कहने वाले जरूरी नहीं बुजुर्ग हों, कुछ लोग आदतन भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये किसी काम को ना करने

का एक बहाना जो होता है, किसी काम को सीखने के लिए सबसे जरूरी है उस काम को करने की आपकी इच्छा शक्ति। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी, फिर जानने को किसी काम को जानने की उत्सुकता नहीं होगी, तब तक आप कोई चीज वाकई नहीं सीख सकते। इसीलिए जब भी जहां भी अवसर मिले, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता, उम्र के किसी मोड़ पर काम जरूर आ जाता है। इसीलिए जब सीखना हो तो किसी का ना उम्र देखनी चाहिए, ना समय देखना चाहिए, और ना ही देखना चाहिए कि हमारा उस्ताद कौन है, यानी कि उसकी उम्र क्या है, वो छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सीखने से मतलब कोई कुछ भी सिखाए।

फिल्म थी सावन की घटा और आवाज थी आशा भोसले की, जो गीत आपने अभी सुना था। और अब बात एक ऐसी जगह की जहां स्वच्छता कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि जीने का सलीका है, वहां की जीवन शैली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के एक खूबसूरत गांव मावलिनोंग की, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। ये गांव प्राकृतिक रूप से तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत और खास

बात यह है कि यहाँ की सुबह की शुरुआत सफाई की एक खूबसूरत परंपरा से ही होती है। स्कूल जाने से पहले छोटे छोटे बच्चे, घर के बड़े और बुजुर्ग सब मिलकर गांव की सड़कों पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में गिरे सूखे पत्ते और जो भी कूड़ा होता है उसे बांस की खूबसूरत डस्टबिन में डाला जाता है, जो कि यहीं की प्राकृतिक रूप से बनाई हुई डस्टबिन होती है। साथ ही यहाँ प्लास्टिक के प्रयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। गाँव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा है और इसके साथ ही यहाँ कचरे से बेहतरीन खाद भी बनाई जाती है। यहाँ की साफ सफाई कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की दैनिक आदत और परंपरा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सफाई उनके लिए कोई काम नहीं, ये तो भगवान की पूजा जैसा है। शायद इसीलिए इस गांव को भगवान का अपना बागीचा भी कहा जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, साफ सुथरी पक्की सड़कें और मुस्कुराते हुए लोग, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हो। तो कभी भी अवसर मिले तो यहाँ जरूर जाएं और इस छोटे से गांव मालुंडकन को जरूर देखें। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही खूबसूरत है पूरा क्षेत्र जो है। तो यहाँ के गांव, जो ये गांव की बात हमने की, वो सिखाता है कि इरादा पक्का हो तो बदलाव किसी भी कानून या उसकी नियम की जरूरत नहीं होती है, बस एक सोच अच्छी होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो अगली बार जब भी रास्ते पर आप कोई रैपर या खाली बोतल फेंकने लगे या कोई भी कूड़ा फेंकते हैं, तो भाई मेघालय के छोटे से गांव को जरूर याद कर लीजिएगा, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी माना और जन भागीदारी से स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है।

आप अभी ये गीत सुन रहे हैं, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से, और आवाज़ है आशा भोसले की। इसी के साथ मुझे यानी रेनू को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

방금 आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन Good.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव

0: बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: Hame Atmanirbhar Bharat banana hai. Chunautiyan aayegi. Chunautiyon ko chunauti dene ka to sanskar lekar ke hum chale hain. Isliye hame har din ek nayi urja lekar सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट वडनगर गेव हिम द वैल्यूज दैट शेप्ड हिज लाइफ, व्हाइल काशी एडेड काउंटलेस कलर्स ऑफ सर्विस टू दोज वैल्यूज। ही नोटेड दैट ओवर द पास्ट 12 इयर्स द गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली। द प्राइम मिनिस्टर सेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, व्हाइल सेल्फ रिलायंस अमंग द वुमेन ऑफ द कंट्री हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार। हमारी जिंदगी के जितनी यादें हैं उनका आईना बन जाती है कुछ आवाजें। प्यार के सुर सुनते हैं उनसे तो कहीं खुशियों की धुन सुनाई देती है तो कहीं जुदाई के एहसास, जिनमें से एक आवाज आज हमारे बीच भी उपस्थित है। लंबे अंतराल के बाद चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो हमारे बीच है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न केवल हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया है बल्कि उन्होंने संगीत की एक विरासत भी देश को दी है। इसीलिए उनके तुलनीय योगदान को देखते हुए देश ने भी उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। हमारे साथ हैं सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक।

0: अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आपको ढेरों बधाई, पद्म भूषण का सम्मान मिला है आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इतने पुरस्कार तो आपको पहले ही मिल चुके हैं अलका जी, लंबी फेहरिस्त है, उनके बीच पद्म भूषण का सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार की तरफ से अगर किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें बात ही और हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सरकार का जिन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है।
0: आपसे मैं अब वो सवाल पूछने वाली हूँ जिस सवाल को मुझे लगता है हर आपका प्रशंसक, आपके फैंस पूछना चाहते हैं। अलका जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और अपने फैंस के लिए मैं आज सामने हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब और

0: मुबारक दे रहे हैं मुझे बार बार।
1: जी बिल्कुल, मेरे को लगता है पूरा देश मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने ना इतने दौर कवर किए हैं, इतने दशकों से आप गा रही हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं कोई गीत ऐसा होता ही है जो अलका जी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अलका जी, अब जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है आपके सामने, आपको पद्म भूषण मिला है और ये जश्न का अवसर है, ऐसे जश्न के वक्त में अलका जी का क्या मन करता है कि कौन सा गीत है जो आपकी भावनाओं को दिखाता है?
0: मेरा अपना गीत तो मुझे ध्यान नहीं है,
1: कोई भी गीत, कोई भी,
0: लता जी का गाना है।
1: हाँ?
0: आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे,
1: क्या बात है,
0: बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए?
1: और हम आपको उड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन आपने अगर, क्योंकि ये कैसा पड़ाव होता है ना अलका जी, जब आप मुड़कर देखते हैं कि मतलब मुझे पद्म भूषण मिला है तो जिंदगी में मैंने क्या क्या हासिल किया, आपने इतनी शोहरत, इतना प्रेम हासिल किया है, प्यार हासिल किया है सबका, किसको देती है इसका श्रेय?
0: इसका श्रेय मैं देती हूँ अपने माँ। मम्मी मेरी गुरु रही हैं, क्लासिकल सिंगर थी, क्लासिकल गाती थी, और मेरा झुकाव जो था वो लाइट की तरफ था थोड़ा, तो उन्होंने मुझे वैसे भी ट्रेन करना शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक में, ताकि उसको जिस तरह से यूज कर सकते हैं लाइट की फील्ड में, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो बस वो होती है आज तो बहुत खुश होती हैं,
1: वाकई बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपका हाथ पकड़कर वही आपको मुंबई तक लेकर गई, उन्होंने ही आपके सफर को आगे मुंबई तक पहुंचाया था, तो आपको याद है वो यादगार पल जब राज कपूर जी से मिले आप, लक्ष्मीकांत जी से, कल्याण जी, इन सब ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना?
0: हाँ, किया तो है। मैं जब बॉम्बे आई तब मैं बहुत छोटी सी थी और मम्मी पापा मेरे साथ रहते थे, और हर दिन उनकी छत्र छाया में मैंने गाने गाए और लोगों ने सुने।
1: और लक्ष्मीकांत जी ने आपका हाथ थामा, उसके बाद शायद आपको एक और ऊंची उड़ान के पद मिले।
0: हाँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो जब मैं आई इस लाइन में तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा एक नाम था, तो उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया और अच्छे अच्छे गाने दिए, गाने को एक दो तीन जैसे था, बहुत पॉपुलर हो गया था, एक के बाद एक
1: गाने आते गए और आप गाती गई। लेकिन सोचिए 1980 में आपने अपना पहला गाना गाया ना, उसके बाद अब तक तो कितने दौर की अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए आपने गाया, कौन सी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो आपकी आवाज कहते थे कि आपकी आवाज उन अभिनेत्रियों पे सबसे सटीक बैठती है, जैसे आपको माधुरी की आवाज तो कहा ही जाता था।
0: मेरी आवाज मुझे लगता है कि सबसे अच्छी माधुरी दीक्षित पे बैठती है और जूही चावला, रानी मुखर्जी, एक्चुअली सभी के लिए गाया है मैंने।
1: बहुत से गायकों के साथ भी आपने गाया है, कभी आपको अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करनी पड़ी?
0: नहीं, कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी, गाया तो मैंने सब सिंगर्स के साथ है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यादगार जो है वो है किशोर कुमार के साथ गाए हुए गाने, और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मैं बस आती थी, गाना सीखती थी और दिल से गाती थी।
1: अच्छा, अगर गायकों की मैं बात करूं, आपने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ गाया है, मतलब सोचिए लता दी, आशा ताई, किशोरदा के साथ साथ आपने उदित नारायण, कुमार सानू तक सबके साथ ही गाने गाए हैं, इन सबके साथ गाते हुए कौन से ऐसे गायक हैं जिनमें आपको लगता है सीखने को बड़ा कुछ मिला?
0: किशोर कुमार।
1: कोई वाक्या याद है?
0: नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और हंसाते रहते थे हर वक्त, रिकॉर्डिंग के टाइम भी कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे कि हंसते हंसते गला बैठने लगता था, फिर बोलना पड़ता था कि किशोरदा इतना हंसाइए मत, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे।
1: जाहिर है, लेकिन आप जो छोटी सी 10 साल की अलका थी जो मंच पर खड़ी हुई थी और इतनी तालियां मिली थी आपको उस परफॉर्मेंस में जब आपने परफॉर्म किया था।
0: हाँ, मैं कुछ 10 साल की थी तब, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बलसारा करके, वी बलसारा, उनके साथ मैंने स्टेज पे गाना गाया था।
1: अच्छा अलका जी, आप मुझे लगता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाती है ना तो उनके बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी लोरियां सुनने को मिलती हैं। आप साइशा को क्या लोरी सुनाती थी?
0: साइशा को मैं लोरी तो नहीं, मगर वो जो गाना है लता दीदी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
1: अच्छा,
0: वो फिर गाती थी मैं उनके लिए, उसकी बर्थडे पर मैं हमेशा खास तौर से गाती थी।
1: फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता था? इतना व्यस्त रहता था आपका कार्यक्रम।
0: ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों का, उनका बहुत सॉलिड सपोर्ट था, तो वो लोग काफी कुछ संभाल लेते थे, तो उनकी वजह से मैं कर पाती थी काम।
1: कोई आपका ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना मेरे को जब भी मन करे मैं गा सकती हूँ, एनी टाइम?
0: एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था।
1: आप एक रैपिड फायर करते हैं, एक कंपोजर, कोई एक ऐसे संगीतकार जो इनके साथ आप आज भी गाना पसंद करेंगे किसी भी दौर का?
0: आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: ओके, क्लासिकल म्यूजिक।

0: या फिल्म म्यूजिक?
1: फिल्म म्यूजिक.
0: स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
1: स्टेज परफॉर्मेंस.
0: ओके. एक सॉन्ग कोई भी कभी कभी जो आपको लगता है कि काश मैंने गाया होता, किसी और का गाया होता?
1: जी यही गाना, जैसे मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने नहीं गाया, लता दीदी ने गाया
0: जी.
1: लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि काश मैंने गाया होता ये गाना.
0: एनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कोई स्टेज की मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपके जहन में आ रही हो?
1: अब्रॉड जो शोज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के जितने शोज हैं अब्रॉड के वो मुझे सब यादगारी हैं.
0: अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती?
1: सिंगर नहीं होती तो हाउसवाइफ होती नॉर्मल.
0: सीरियसली?
1: हाँ, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मैं सिंगर बनूं या कुछ, मैं यूं ही गाती थी. मेरी जो मम्मी थी उनको लगा कि इसमें कुछ खासियत है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए.
0: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आई हैं. अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
1: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है और इसके लिए कंसिडर किया

0: इसमें कुछ खासियत है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए।
1: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आई हैं। अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
0: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है और इसके लिए कंसिडर किया और ये अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैंने सोचा ना था।
1: सभी फैंस, सभी उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे, अपनी जिंदगी का कोई एक सबक जो आप उनके साथ साझा करना चाहेंगे?
0: ना फोकस रखें अपने काम पर, अपने गाने पर, रियाज पर, ये जो चकाचौंधी है उससे दूर रहें, लगन से करना चाहिए काम जो भी करना है।
1: Well, that is so nice of you. Thank you so much, Alka ji. I'm sure हमारे आपके सारे फैंस आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और उन सब के तरफ से और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं।
0: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।

0: पीपल्स पद्म और आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रसारित किया गया।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 1:38 हुए हैं और ये वक्त है अब कलाकार बेमिसाल का। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक एसपी बालासुब्रमण्यम, जिनका आज जिक्र होगा कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। एक अच्छे गायक होने के साथ साथ एसपी बाला जी एक अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी रहे हैं। इन्हें 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सलमान खान के करियर की शुरुआत में एसपी बालासुब्रमण्यम ने सलमान खान के लिए उनकी कई फिल्मों के गीतों के लिए अपनी आवाज दी। कलाकार बेमिसाल का यह सफर आज एसपी बालासुब्रमण्यम के फिल्मी करियर की बातें करते हुए और उनके गाए गीतों को सुनते हुए हम तय करेंगे। आप भी सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पार्श्व गायक SP बाला सुब्रमण्यम, जो कि एक बहुत अच्छे अभिनेता और निर्माता भी रहे हैं, बालू के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें जाना गया। जन्म इनका हुआ 4 जून 1946 को मद्रास के नेल्लोर में। सलमान के अलावा उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हासन की आवाज भी माना जाता है। SP बाला सुब्रमण्यम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साथ साथ संगीत की शिक्षा भी ली और 15 दिसंबर 1966 को तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से SP बाला सुब्रमण्यम के गाने की शुरुआत हुई थी, यानी कि इनके जो फिल्म इंडस्ट्री में इनका जो करियर था उसकी शुरुआत हुई थी। एक बेहतरीन गायक, संगीतकार और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ SP बाला सुब्रमण्यम एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड और अर्जुन सरजा जैसे अभिनेताओं के लिए वॉइस ओवर किया। इतना ही नहीं, फिल्म दशावतरम के तेलुगु वर्जन के लिए उन्होंने कमल हासन के 7 किरदारों की आवाज का वॉइस ओवर किया और इसमें बूढ़ी औरत वाले किरदार की आवाज भी शामिल।

0: तो ऐसी वर्सेटाइल शख्सियत रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम।
1: मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: शोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूँ?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहाँ पर तय कर रहे हैं। पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्माता, वॉइस ओवर आर्टिस्ट SP बालासुब्रमण्यम का जिक्र हो रहा है। पिछले 5 दशक में करीब 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए हैं और यशुदास के बाद SP बालासुब्रमण्यम बेस्ट मेल सिंगर के सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड पाने वाले दूसरे सिंगर रहे हैं। 6 नेशनल अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। कार्य क्षेत्र इनका रहा मुख्य तौर पर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सिनेमा, और इन्हें प्राप्त उपलब्धियों की अगर बात करें तो 16 भाषाओं में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम रहा और विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट गायन के लिए 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। सन 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 2021 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी के मालिक रहे SP बालासुब्रमण्यम, जिनकी इस वक्त हम बात कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1।

सौ 92.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और 104 FM मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने के दिनांक 25 और दिन है शुक्रवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत वर्मन और हेमंता सुरगिरी, मोनपा में उद्घोषक श्री धुप्तन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी वमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

रिव्यू के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीटी न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Soo Hyun Hong and Geon Chu, who took silver with 478. Kamaljeet and Suruchi had topped the qualification with 587 points, including 29 inner tens. Indian men's and women's kabaddi teams have also entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. Indian squash players have assured themselves of 3 medals at the Asian Games, with Joshna Chinnappa and Velavan Senthilkumar reaching the mixed double semi-finals, while Anahat Singh and Abhay Singh entered the last 4 in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone, interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि

0: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह-संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर

0: प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन

0: निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
3: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
2: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
4: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत

0: सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति।

गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का

0: अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापूजी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी शरण के लिए है। रोहतक में और जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन कहते हैं। पहले भी था ऐसा, तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहिर लोग भी पड़े हैं, उसी जगह पे हरिजन। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है कि वो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे, और पीछे वहां भी देखो हक की बात आ जाए, हक से लेंगे, क्योंकि वो तो हरिजन है ना। तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए, और नहीं तो भूखा रहे। और दलना या दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी स्वतंत्र चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहा, रहते हैं कि नहीं, और इतना काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल, तब पीछे इसी बात पे जा हो जाते उसका काम बिगड़ जाता है, और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा है, थोड़ा सा पढ़े पड़े हैं, लेकिन पढ़ते हैं, और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। तो वो तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्तियों को तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्र चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड दे सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को ही दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है तो तबाह होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो करोड़ों कथा बोली सुनाऊंगा, कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हिंदू ने नहीं किया है, करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है, तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है। तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए है, तो मुझको ये कलो कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते रहे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है, क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से करो साफ, तो पीछे हम यही, तो पीछे हम जाके जात स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे, और पीछे हर एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं।

एक का काम है कि ढंग सिखाना और करना, दूसरा का है कि ढंग का की रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना। तो अपना पेट भर, अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध कोली हो, और वो सब प्रजा के लिए है। और पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए, तो सूत्र तो वो सेवा करें, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बैठ सकते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो सूत्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो सूत्र का ही माने सेवा का ही काम करना, सब सेवा है। जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है। लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे है किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा। ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की, और उसको पीछे पंचम वर्ण पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है, हमारे हम धर्मों से हट गए इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, तो हम हिंदू, हम सिख, सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोताओं में आपने सुना गांधी स्मृति से गांधी जी का विचार, गांधी स्मृति से हिंदू धर्म पर गांधी जी का विचार, तत्पश्चात गीत। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीडिया वेब के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं बेंग्या हेमंता और ताना तारम तारा के सुरों में चंद नीशी आधुनिक नगमे। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: बेंग्य हेमंता और ताना तारम तारा के युगल आवाजों में निशी आधुनिक नगमे श्रोता इसी नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के थर्ड सेमेस्टर के मिस संग युटुन द्वारा वृक्षारोपण का महत्व विषय पर चंद संदेश।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संग युटुन दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय में 3rd सत्र की छात्र हूँ। आज मैं वृक्षारोपण की महत्व विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहूंगी। उस हरियाली की जो न केवल हमारी पर्यावरण की शान है बल्कि पृथ्वी के संतुलन की पहचान भी। प्रिय श्रोताओं, पेड़ पौधे केवल हरियाली ही नहीं देते, वे हमारे जीवन की आधार भी प्रदान करते हैं। वे हवा को स्वच्छ बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को क्षरण से बचाते हैं और वर्षा के संतुलन को बनाए रखते हैं। वृक्ष हर मौसम में हमारे अनमोल साथी हैं। गर्मी में छाया बनकर, बरसात में सुरक्षित बनकर और हर पल जीवन सहायक बनकर। परंतु बढ़ती जनसंख्या शहरी के कारण पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। जहां कभी हरी भरी वन संख्या लहरती थी, वहां आज ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है। इस स्थिति की बदलना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करे, तो आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण देने का हमारा संकल्प पूर्ण हो सकता है। पेड़ केवल प्रकृति का उपहार नहीं, वे हमारी विरासत है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, धरती को हरा भरा बनाने का, पर्यावरण को हरा भरा बनाने का और वृक्षारोपण को अपनी दैनिक आदत बनाने का, क्योंकि जब पेड़ बचेगी तभी जीवन बचेगा। आकाशवाणी से यह प्रस्तुति आपको समर्पित थी, एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरी भरी पृथ्वी के नाम। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपने सुना दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के थर्ड सेमेस्टर के छात्रा मिस संग युटुन से वृक्षारोपण का महत्व विषय पर दिए गए संदेश। श्रोता के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। मीडियम एप के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा आइए सुनते हैं लैला मजनू फिल्म से अरिजीत आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की युगल आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जॉय बोरा ने।

मीट ब्रोस और मोनाली ठाकुर के युगल आवाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया बागी फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे कुमार दत्ता, संगीतकार थे मीट ब्रोस। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के युगल आवाजों में। शफरत रचना इरशाद कामिल के है तथा धुन विशाल शेखर का।

श्यो तो श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के गाय फिल्म हैप्पी न्यू ईयर केसी नगमे के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले सुनते हैं यह संदेश।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

104 एफएम मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं RRR फिल्म से, विशाल मिश्रा और राहुल शिपाली कुंज की आवाज में। इस गीत के गीतकार है रिया मुखर्जी तथा संगीतकार है MM क्रीम।

बेनी डेल और अनुष्का मंचंडा के गुलवाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया। एक मई और एक दो फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार थे अमित त्रिवेदी। श्रोता कार्यक्रम का अगला नगमा यम आपको सुनवाते हैं कविता सेठ की आवाज में फिल्म वाकफ सेठ से। जावेद अख्तर के लिखे पोल पर संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोइनी।

श्रोताओं, आतिफ असलम और शालमाली कोलकाते की आवाजों में अभी आपने आनंद लिया फिल्म एंटरटेनमेंट से यह नगमा। प्रिया पंचल के लिए इस गीत को संगीत दिया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा यह आनंद लेते हैं रमैया वास्तव्य फिल्म से आतिफ असलम और शीरा घोषाल की युगल आवाजों में। गीत प्रिया पंचल के है तथा संगीत सचिन जिगर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना तिरी इरिस फिल्म से शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में यह नगमा। इस गीत के गीतकार थे सावन किरकिरे तथा संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा को हमने लिया है फिल्म किस्मत कनेक्शन से। आतिफ असलम और अलका यादमी के युगल आवाजों में इस गीत के गीतकार है सईद कदरी तथा संगीतकार है प्रीतम।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे राग हेमावती और नीलम्बरी पर शेख चिन्ना मौलाना से शहनाई वादन। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित आपसे कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अब आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में एक नए पुष्पीय पौधे की प्रजाति बेगोनिया निलमोरम की खोज हुई।

0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन में सूबेदार एवं मानद लेफ्टिनेंट करण सिंह हाउस कंट्रोलर लोकभवन को राज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग आज से 28 सितंबर तक ईटानगर नाहरलगुन के 5 अस्पतालों में अस्पताल मुख एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। तिरप जिले में समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हिंगथोम फाउंडेशन ने न्यू तोपी गांव में सामुदायिक वन में रहने वाले वन्य जीवों के दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए कैमरा ट्रैपिंग पहल की शुरुआत की। तवांग जिले के मागो और सेला क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के आसपास तथा उनके निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट फ्लड के जोखिमों पर 5 दिवसीय जागरूकता एवं संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IVSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई और जापान एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा।
0: श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिनमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पेश है ये रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
0: अरुणाचल प्रदेश के कई पन्यूर जिले में एक नई पुष्पीय पौधे की प्रजाति बेगोनिया निलमोरम की खोज की गई है। ये प्रजाति समुद्र तल के करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर कई नदी के किनारे पाई गई है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि इस पौधे की नई प्रजाति का नाम निशु समुदाय के नीलाम वंश के नाम पर रखा गया है। स्थानीय स्तर पर इसके कोबिर होपू बाबराय के नाम से जाना जाता है। श्री मेन ने कहा है कि इस खोज के साथ पूर्वोत्तर

0: भारत में दर्ज की गई बेगोनिया प्रजातियों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये खोज अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को रेखांकित करती है और अपनी प्राकृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पारनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन में सूबेदार एवं मानद लेफ्टिनेंट कर्ण सिंह हाउस कंट्रोलर लोकभवन को राज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें उनकी विशिष्ट सैन्य सेवा और लोकभवन के कुशल प्रबंधन में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि सूबेदार एवं मानद लेफ्टिनेंट कर्ण सिंह समर्पण, अनुशासन, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों के प्रतीक है जो भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपराओं को परिभाषित करते हैं। कारगिल युद्ध के अनुभवी और राजपूताना राइफल्स के गौरवान्वित सैनिक कर्ण सिंह ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल परिस्थितियों में साहस और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग आज से 28 सितंबर तक ईटानगर और नाहरलगुन के 5 अस्पतालों में अस्पताल मॉक एक्सरसाइज आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य भूकंप और बहुआपात स्थिति के दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा अस्पतालों और विभिन्न प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना और मजबूत करना है। इस अवसर पर और इस अभियान के दौरान भूकंप, बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने, आग लगने, खोज और बचाव अभियान, निकासी तथा बड़े पैमाने पर हताहतों के प्रबंधन सहित विभिन्न आपातकालीन स्थितियों को कृत्रिम रूप से अभ्यास किया जाएगा। आम जनता और मरीजों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कृत्रिम आपातकालीन परिस्थितियों को वास्तविक आपदा न समझें और न घबराएं। तिरप जिले में समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंगटन फाउंडेशन ने न्यू तोपी गांव में सामुदायिक वन में रहने वाले वन्यजीवों के दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए कैमरा ट्रैपिंग पहल शुरू की है। हिंगटन फाउंडेशन तिरप जिले में स्थित एक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है। इसके सह संस्थापक और संरक्षणवादी चाजो लोवांग तथा सारा खोंगसाई पिछले 5 वर्षों से जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तवांग जिले के मागो और सेला क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले हिमनद झीलों के आसपास तथा उनके निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के जोखिमों पर 5 दिवसीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन लुंगला के दोंगसेन मैंग स्थित SSB आउटपोस्ट में हुआ, जिसमें सशस्त्र सीमा बल के जवानों और स्थानीय समुदायों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए तवांग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ज्ञानवंत सोनू ने संवेदनशील निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों के बीच ग्लोफ के जोखिमों को लेकर जागरूकता और तैयारी के महत्व पर जोर दिया। मेक इन इंडिया पहल आज 12 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया गया था। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्री ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान में नगोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वही पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi has said that Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also

0: 우승 스위치 동작이 이름 군사 지구도도 대시 우슬리마 잠실가 슬링 디렉터 고습 업성 분수 C C 시행국 가르보사 나사
1: 감시에 가진 체인쇼 여긴 한대셔서 제6고갑대타오 백윤생 조우천의 나랑시에 개부상빈 삼야차로 인생이나다 공사격군 전부 제진 랍신 유어디 녹내나 시시엔소 믹색 반도 템틱네 개발전디 인물 다 이제 랑이스가디 막았나 다 이제 꿈농지치 티 나이에디 롭종디 야야 다 샨미시 판독마데나 나는 미세가 판다로서디 전화삼약시 수능사육다 규디 인물삼야 당도 자르고서 견전시치 이제나 이제다 대니 부친 나가나나 갈든사시 어서디 라이베니아 역시 사시디 엄든디 숨 지슈 그레스마 메담 시티 숨데 할림디 카야 할림 모조라디라 이제부터 이치 티 자르고서디라 지네다 우게 템디니 섬도 만나서 뭐래 당고 우죽 토가데 믹스 가차도디 밥슈모드 세디모 놈신다 우 하차도 반도 템디니 내우스 나가 도나디 야 역시 지 달로 요르데가 임나다체 패션 무강시 디슈는 디저티 요거로 이제 다소 양매디디 니상야모 잠세가 살라 레시마 메담 베바시 때는 니슈야지 나다 슝케르가니 아니나 요디 페모 아가리티 야가시 증가나에 이제 블랑스 블리디 꼭 마슈가 된부터 쓰고 또 도둑지 잘매디로 셈네가 요디 때 레버라시다 잘매 당기실락 때 기실락 깔롭지 때 강티냐노 이제 플랑숨 리디스와지 요요데 판토라 이제 때 당라 비리야야미나 엄마다람살라데 다데 나단 사우디스 에시아 기약합 요르테 기약합 요르데 섬에 대다람살라 플랑 양로디네 이제 때 쇼아니샷 이제 때 자유디라 이제 자유 요디라 다 큐상 랑시 판토 요디니쇼 샨무시 판토 내나만에 나단시 판토 요르디니 오소레 이제 아고르데 미모 할렘디 셀프시 아고르데 오레 왜냐 이제 나이 자유지 마셔도 셀프시티야 장고 किताब से इतना नहीं मिलेगा वो नीचे उस हिंदी ने जिंगादां ब्रिटिश ने इंजे सुमगावन ने जट के देश ने खोला दूंगे अरे इस ओमिंशो जट के से ही ने वो मिनाशे बंदों में तो मगाशंग मिनाशे बंदों योनी उस बंदों योनी सीशे इंजो गादां तो ना या कुछ दे रंगशे यो यो बंदों तो शो या कोई इच गिनसन जो उच इज नोले या कोई ले दाई मना समझोगा जिस समझ यो इन उच ता सीशे इंजो गादां गेरगन हिशे मेंबर शो उत गादां मंदु काम चाहोगे कोक मजूगा दिन बदे उत मन में काम शुरू करने गए हों या सब उस सीशेन जो मातम बच्चे के दोना लिया है कोक मार्शियो का तुम बते तू इधर तो जाओगे ना मातम मन लंबे ने कांगे कुछ कोंगा तुम तो काम सही तो नहीं होगी मातम लंबे ब्रीड है का कांगे चीची मिक्सिंगी मातम हो सांगुतों में तो यू कांगे नहीं में कांगे जो मार्शियो जो मातम ये चीनी में जोमशीसो एतांग लिवदी जिलिस उत त्यांगोरेंबुचे ग्यावतामचे किंबा नातांग आपशे तोबुक्योने मुनुमशेंदर इत दंबचे चिगे कागासुगु चेरे क्याबा मैं हाचिर्दो क्याबे तांगलाओजो रेशमे मेडमसी एतो नामे इत बाजे याकोले मने डाने उत लपचिन जोमशी नंदा दिजे साथने में याकोले नातांग लुंबु प्रीति गा कांगे बाजो सही गोए ना नाता उत दोना याकोए ने ते उत मिथीसी सेक्शन थी गा सोकबे थीसी उगा गेरगन बाजे जांगे या शनो बाजी जंगो समो ने गेरगन बाजी जंगो ने जे ओनो नंगे जंगो ने आज इति जिक्का ने फंदो मे गिम समो ना हसम लो गाय ने फंदो मे गदाशी फंदो रिम जंगन बाजी शि फंदो रे गिम शिने लुंब जिने ना फंदो मे गिम से इन ओत सि लुंब जिने ना फंदो मे गिम से जो दोंग ओ जो ए दंगे लो जो नानो मे ओए सालखों सुम ने छपों सुम ने सालखों सुम ने छपों सुम मे शेत बुरे इचे नाना छे रंग इंडिविजुअल लेवल का रंग गेर मिसे का युवा गया रे वसुती इजे शुचे चिसो लेवल आ सोसाइटी लेवल आ युवा गया के गुज जुदा छे मलक ने या छे इचे सिस्टम लेवल आ युवा गया के गुज तुम द उठले डाशो मन ने नादा मन नंब चित्ता युवा दे थों गो ना इशु छे लोग बाइबल जो गंदे जों जो ने सन नंगे लमरिम जो गंदे दा नतांग इ देने चित्ता को यंग खादियो छे तो मिशो ने उत जत दे दे खलो दो ने ना छे यु फंतोनी इ थोसो गय लेक्चर ला भी या छे देगा देगा उत जिन्ने छे जु मुनुम ने दे मे सिलान ने रूप लो यु मुनुम ने दे मे ते उत नेंगा खाले माल में कुन माया शतंग बो रूप लाया थपतुर ते सीला नेगा रूप लोई मुनु ये शो सबसा माया ने दे इच्छमा दे गई तिने छो रे चिने उत पास ओए लोब जों दे या या इच थोर थोर गई या चिक तमला शत के उत नेंग सुगा हाले माल में शो या चिक लुई या शतंग

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 6:10 हुए हैं। निजी श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम झरोखा। कार्यक्रम झरोखा में आइए पहले सुनते एक जरूरी सूचना। मोन्यूल यावा जंपा मुल्लम तुमची चिन्मो के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से प्राप्त सूचना अनुसार जंपा लागंग जमचलिंग मठ में दूसरा यानी सेकंड मुल्लम यावा जंपा मुल्लम तुमची चिन्मो आगामी 5 अक्टूबर 2026 से 10

2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यह पवित्र प्रार्थना सभी समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें सर्वभौमिक शांति, करुणा, ज्ञान और धर्म के उत्कर्ष प्रदान प्रार्थना की जाएगी। इस दूसरा मुन्नुल ग्यावा जंपा मुल्लम तोंची चिमो में तवांग जिले के सभी भिक्षुओं भिक्षुणियों चोस्पा लामों और आम जनताओं से इस शुभ प्रार्थना सभा में शामिल होने की अनुरोध की गई है। सेकेंड मुन्नुल ग्यावा जंपा मुल्लम तोंची चिमो का कार्यक्रम अनुसूची इस प्रकार है। 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मुल्लम प्रार्थना, सुबह 10:15 से 11 बजे तक सुनचे, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मुल्लम प्रार्थना, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक दिन का खाना यानी लंच, दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक मुन्नुल प्रार्थना, 6 अक्टूबर 2026 से 9 अक्टूबर 2026 को मुन्नुल प्रार्थना, 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जंपा चेस्कुल, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक दोपहर का भोजन यानी लंच, दोपहर 1 बजे से पद्मश्री 12वीं गुरु तुलको रिम्पोचे द्वारा सेवंग यानी लंबी आयु के लिए अभिषेक प्रदान किए जाएंगे। सूचना समाप्त हुआ। कार्यक्रम जरोका के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शैतलिन में मेरू गुम्पा कौशिक ग्रुप के श्रीमती यमचिन लामो और साथियों से युंचक सुम्पा तुमशा ड्रामा ग्यावे जप्तन परचिलम सिल कैप्ट्रो और नोवा मल्लम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज शाम 7 बजे हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर हिंदी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता में एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय की 5वीं कक्षा के छात्र टाशी वर्धन से कविता। कविता का शीर्षक रहेगा लाइफ। आज शाम 7:11 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। शाम 7:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज। शाम 7:50 पर आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत टाइगर श्रॉफ की आवाज में। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने सदाबहार नगमों का। रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोता ये तो थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोतों अब हम आपको कल यानी 26 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा कल का सवा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा मंदर उदास की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत कार्यक्रम वंदना के तहत।
कल पर 3 बजे हवाने ले

सकेंगे। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मिशमी आधुनिक नगमे सिंघम लिंगी और ओतोकी मूली की आवाजों में कलों पर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के 5th सेमेस्टर की छात्रा मिस लोफसंग यंकी से छात्राओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर दिए गए संदेश। कल पर 3:33 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल पर 3:50 पर आह्वान ले सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल संध्या 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5:00 सुनेगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत नामदर लिरिम। 5:35 पर तावांग मठ के केलों जंपा जिनपा और साथियों से नेतन शख्सें 6:00 लिरिम से 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 7:10 पर सुनेगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कल शाम 7:30 पर सुनेगा दोनों में गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। कल शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा 10 फिल्म से एक देशभक्ति गीत। शंकर माधवन उदित नारायण महालक्ष्मी आयर और साथियों की आवाजों में। कल रात 8:00 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। कल रात 8:15 पर सुनेगा आकाशवाणी के टनगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन तत्पश्चात रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9:00 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: अरुण एफएम 103.1
1: जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से

लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कविता का शीर्षक थे लाइव। श्रोता इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:12 हुए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आइए सुनते हैं एक ही संगीतकार जतिन ललित के संगीत निर्देशन पर चंद हिंदी फिल्मी नगमे। दर्पण कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं अलकायत्मिक और कुमार सानू के युगल आवाजों में फिल्म अलबेला से। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार है जतिन ललित।

इस श्रोता भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सैया नगमा। इस गीत के गीतकार थे आनंद बख्शी तथा संगीतकार थे जतिन ललित। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए हम

श्रोता समय भाना ले रहे हैं दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही संगीतकार जितिन ललित के संगीत निर्देशन पर चंद हिंदी फिल्मी नगमे आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं मोहब्बते फम से लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल सुरों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जितिन ललित ने।

अच्छा, तो अभी आपने सुना उदित नारायण की गाय फम प्यार किया तो डरना क्या फम से या नगमा। इस गीत के गीतकार थे मशरू सुल्तानपुरी तथा संगीतकार थे जतिन ललित। श्रोता से नगमा के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब इसमें हर व्यक्ति का योगदान और भागीदारी सुनिश्चित हो सके। श्री मोदी ने यह बात सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वडनगर ने उन्हें वे संस्कार और मूल्य दिए जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया, जबकि काशी ने इन मूल्यों से सेवा के अनगिनत रंग चौर दिए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि युवा भी सेवा के अनेक रंगों से इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत में शहरों और गांवों के बीच की दूरी काफी कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बताए गए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवादन के साथ सिद्धांतों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता सेवा की भावना के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए मार्ग पर चलने के लिए गर्व महसूस करता है। आज मेक इन इंडिया पहल के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के साथ इस पहल की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया पहल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, निवेश और क्षमताओं का विस्तार करते हुए भारत के विनिर्माण परिदृश्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि बदलाव लाया है। आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ने देश के विनिर्माण क्षेत्र की यात्रा में कारोबारियों और निवेशकों की भागीदारी के लिए नए अवसर खोले हैं। बाद में इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें विनिर्माण क्षेत्र से 15 और सेवा क्षेत्र से 12 क्षेत्र शामिल है। 101 एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाघवा ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के रसद और प्रशासनिक सहायता, नागरिक सैन्य समन्वय तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR तंत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने क्षेत्र में निर्बाध युद्ध रसद और परिचालन समन्वय सुनिश्चित करने के शिलांग स्थित 101 एरिया की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कमान की त्वरित और पेशेवर प्रक्रिया की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि समय पर किए गए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों से प्रभावित समुदायों को अमूल्य सहायता मिली है। अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए राज्यपाल ने नागरिक सैन्य संपर्क को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर

0: उन्होंने कहा कि प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया और जन कल्याणकारी पहलों के लिए सशस्त्र बलों, राज्य सरकार और नागरिक प्रशासन के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय के ब्लॉक 2 से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक रूप से रवाना किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के कला एवं संस्कृति निदेशालय के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के साथ गुजरात की यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इनमें दोनों स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय NIT अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पासीघाट के प्रतिभागी भी शामिल है। फ्लैग ऑफ समारोह में गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग, कला एवं संस्कृति मंत्री दासांग लोपुर, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। पोषण माह 2026 के तहत पापमपारे जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आज यूपी स्थित जिला परिषद अध्यक्ष सम्मेलन कक्ष में एक रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में पापमपारे जिले के सभी एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS सेल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बाल विकास परियोजना अधिकारियों के समन्वय से भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से तैयार किए गए पौष्टिक और नवाचारपूर्ण व्यंजनों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पापमपारे उपायुक्त मामू हागे ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के उपयोग के माध्यम से स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने से न केवल स्वस्थ खान पान की आदतों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि पारंपरिक पाक कला संबंधी ज्ञान के संरक्षण में भी योगदान मिलता है। उन्होंने स्थानीय व्यंजनों का दस्तावेजीकरण करके उनके पोषण संबंधी मूल्यों को पोषण चार्ट के साथ उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शित करने का सुझाव भी दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi has said that Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vatnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Mr. Modi said that today marks the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyaya. He highlighted the 7 principles given by Pandit Upadhyaya of service, balance, patience and patience, coordination, positivity, sensitivity and dialogue. He added that every BJP worker takes pride in following the path shown by Pandit Deen Dayal Upadhyaya with a spirit of service. During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Today marks the 12 years of Make in India. It was on this day in 2014 that the initiative was launched with the ambition of becoming a global hub for manufacturing, design and innovation. The initiative has transformed India's manufacturing landscape by expanding production, investment and capabilities across industries. Akashvani correspondent reports that over the years, Make in India has opened a new opportunities for business and investors to participate in India's manufacturing journey. The initiative has subsequently been expanded under Make in India 2.0. The initiative now focuses on 27 sectors, which include 15 in manufacturing and 12 in services. The General Officer Commanding 101 Area, Lieutenant General Mohit Wangwa, called on Governor Lieutenant General K.T. Parnayak at Lok Bhavan, Itanagar today. The meeting focused on logistics and administrative support, civil-military coordination and humanitarian assistance and disaster relief,

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। श्रोताओं समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुरानी नगमों का। श्रोताओं कार्यक्रम का पहला नगमा ये आनंद लेते हैं बाबो फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है मैस्ट्रो सुतनपुरी ने तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है मुल्दाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से आफ है शादेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पटेल, अमोल मानकर, सुबोदय मानकर, शलोक और दीपाली। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बाबू से।

माधवन कॉलोनी तवांग से आप है राहुल। एसबीआई कॉलोनी तवांग से आप सब है येशी तेंजिन देदन और ताशी सिंह। आप सबके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आई लव यू फिल्म से अनुराधा पोटवाल, किशोर कुमार, दयाराम, उषा खन्ना और विजय पंडित की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है योगेश कोट तथा संगीतकार है उषा खन्ना।

जलालाबाद वेस्ट से आप है सुरेश गंगिजा, पूनम गंगिजा, विशाल, प्रिया, दशनी और नमित आहूजा। राज्य असम से आप है हितेंद्र दास। आप सबके फरमाइश पर आनंद लेते कार्यक्रम का अगला गीत फम सफर से मुकेश के स्वर में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने तथा संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्री श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा ये सुनते हैं। पद्मा टालकिस नापानगर मध्य प्रदेश से आफै सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकीर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह। जनकपुरी सहारनपुर से आफै जॉन डिकैस्ट्रो, बिल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। आप सबके फरमाइश पर अयान अली थे कार्यक्रम का अंतिम गीत अग्निपथ फिल्म से सुदेश भोसले कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देश पांडे की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारलाल।

सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत यही समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पदों में, यानी राधे 30 मिनट पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन, राधे 45 मिनट पर समाचार संध्या तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सुरुचि और कमलजीत ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम निशानेबाजी स्पर्धा में जीता पदक। भारत ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारतीय रिले टीम ने 4x400 मीटर स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीता। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन, शॉटपुट स्पर्धा में मनप्रीत कौर और टेबल टेनिस में मानुष और दिया चिताले ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने एशियाई गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है और भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, मेजबान जापान को 3-1 से हराया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। प्रतियोगिता का एशियन गेम्स में भारत ने दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। सुरुचि, इंदर सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम निशानेबाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ये पदक देश के नाम किया। भारतीय निशानेबाजों ने 484.6 का एशियन रिकॉर्ड स्कोर भी बनाया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: सुरुचि इंदर सिंह और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने कड़े फाइनल मुकाबले में सटीकता के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। दक्षिण कोरिया के सुहियोन होंग और गेउन चू ने 478 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता, जबकि ईरान के वाहिद गोलखंडन और हानिये रोस्तमियान ने 415.8 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। सुरुचि और कमलजीत ने पूरी प्रतियोगिता में नियंत्रण बनाए रखा और दबाव के क्षणों में भी एकाग्रता के साथ सटीक शॉट लगाए। मिक्स टीम फॉर्मेट में उनकी पार्टनरशिप बहुत उपयोगी साबित हुई। स्कोर बोर्ड पर जैसे ही 484.6 का फाइनल स्कोर आया, भारत ने एक और स्वर्ण अपने नाम कर लिया।
2: They had a healthy lead, the Indian pairing, and they went on to that.
3: It, gold. That's gold for India. Much awaited gold in shooting, and I'm glad that it came.
2: Well done, Suruchi. Well done, Kamaljeet. It's gold for India in the 10-meter air pistol mixed team final.
1: इस पदक ने कॉन्टिनेंटल लेवल पर शूटिंग में देश की लगातार मजबूती को दर्शाया है। सुरुचि और कमलजीत ने इससे पहले 587 के स्कोर के साथ एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड तोड़ा और हांगझोऊ 2023 में सरबजोत सिंह और दिव्या सुब्बा राजू के बनाए 577 के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा कमलजीत और सुरुचि ने 2021 में सौरभ चौधरी और मनु भाकर की क्वालिफिकेशन टैली के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: पदक जीतने के बाद सुरुचि सिंह ने अपना अनुभव भी साझा किया।
4: बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे, तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है, तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
0: पदक विजेता कमलजीत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
5: शूटिंग का पहला गोल्ड आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी और आएंगे सर। अभी शायद एक तारीख एशियन गेम्स, तो अभी 25 भी रह रहा है।

0: भी रहा है तो और आ जाएंगे अभी तो मेडल। तो ये है कि स्पोर्ट्स की तरक्की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास और भी आएंगे मेडल।
1: उधर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्रांश पाटिल की भारतीय निशानेबाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।

0: फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 1,762 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चीन ने 1,766 के स्कोर के साथ स्वर्ण तथा दक्षिण कोरिया ने 1,751 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीते। राइफल इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने 587 पॉइंट्स बनाए। उन्होंने प्रोन सीरीज में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। टू सीरीज में 593 पॉइंट्स बनाकर पहले दो पोजीशन पर कुल 1,180 का स्कोर किया। उन्होंने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस जारी रखा और स्टैंडिंग सीरीज में 582 शॉट लगाकर कुल 1,762 का स्कोर अपने नाम किया। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैम।
1: तो कह सकते हैं कि आज का दिन भारतीय निशानेबाजों के नाम रहा। निशानेबाजों ने अलग अलग स्पर्धाओं में भारत को कई पदक दिलाए। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। एथलेटिक्स में भारतीय रिले टीम ने 4x400 मीटर स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया। भारतीय रिले टीम की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: माचेट्टीरा पुवम्मा राजू, विशाल थे नरासू, विद्याराम राज और थेक्के नालेल मनु की भारतीय चौकड़ी ने 4x400 मीटर के कड़े मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल करते हुए भारत को रजत पदक दिलाया। प्रतियोगिता में बहरीन ने स्वर्ण जबकि वियतनाम ने कांस्य पदक जीता। जापान चौथे स्थान पर रहा। भारतीय टीम ने 4x400 मीटर इवेंट में शानदार प्रदर्शन का दौर बरकरार रखा। भारत ने एशियन गेम्स जकार्ता 2018 में इस इवेंट में गोल्ड और हांगचो एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर जीता था। विशाल ने इससे पहले दक्षिण कोरिया के गुमी में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में गोल्ड और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में सिल्वर जीता था, जहां ये व्यक्तिगत 400 मीटर में भी चौथे स्थान पर रहे। भारतीय एथलीट विद्या ने ओलंपिक गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें पेरिस 2024 में 4x400 मीटर रिले भी शामिल है। उन्होंने 2022 एशियन गेम्स में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर और 2023 एशियन गेम्स में 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: वहीं भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 10,000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दो एशियन गेम्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने हांगझोउ में हुए एशियन गेम्स 2023 में इसी इवेंट में जीते ब्रॉन्ज मेडल के साथ अब सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर लिया है। वे पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में दो बार एशियन गेम्स के पोडियम पर खड़े होने वाले पहले भारतीय बन गए। हालांकि गुरिंदर वीर सिंह से भी उम्मीद की जा रही थी कि वो भारत को पदक दिलाएंगे, लेकिन इसमें वो असफल रहे। लेकिन एशियन गेम्स में आज एथलेटिक्स में भी भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। और अब बात टेबल टेनिस पर। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को सुन यिंग शाह और वांग चुकिन से 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। मानुष और दिया एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी मिक्स डबल्स टेबल टेनिस जोड़ी बन गई है। उनसे पहले शरत कमल और मनिका बत्रा ने ये उपलब्धि हासिल की थी। मानुष शाह और दिया चिताले ने पहले गेम में अच्छी चुनौती दी, लेकिन वे 8-11 से हार गईं। दूसरे गेम में चीनी जोड़ी ने पूरा दबदबा बनाए रखा और भारतीय खिलाड़ियों को 5-11 से मात दी। तीसरे गेम में भी मानुष और दिया की शुरुआत खराब रही और वे 5-0 से पीछे रहीं, लेकिन उन्होंने भारत को एक पदक दिलाया है आज। और अब बात पोल वॉल्ट पर। बारानिका एलांगोवन ने पोल वॉल्ट में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 4.15 मीटर की ऊंचाई पार करके कांस्य पदक अपने नाम किया। बारानिका पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। बारानिका का ये शानदार मेडल उनके लिए एक बेहतरीन साल का समापन है, जिसमें उन्होंने भारतीय महिला पोल वॉल्ट में बार बार नए मानक स्थापित किए हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारत की अनुभवी एथलीट मनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के शॉटपुट फाइनल में कांस्य पदक जीता। मनप्रीत ने 17.17 मीटर दूर गोला फेंककर

0: तीसरा स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: मनप्रीत ने अपने चौथे ही थ्रो में 17.17 मीटर की दूरी हासिल करते हुए भारत को कांस्य से पदक दिलाया। वहीं कृष्णा जयशंकर 16.57 मीटर का थ्रो कर पांचवें स्थान पर रहीं। चीन की सोंग जियोन ओंग ने स्वर्ण और झोंग लिरू ने रजत पदक जीता। इससे पहले मनप्रीत 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य से पदक जीता था। वे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बहुत कम अंतर से पदक से चूक गई थी और 17.49 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रही थी। उन्होंने 2016 ओलंपिक्स गेम में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मनप्रीत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 18.6 मीटर का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आज मनप्रीत का भी बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। उन्होंने देश को एक नया पदक दिलाया है। 17.17 मीटर दूर गोला फेंक कर उन्होंने देश को कांस्य पदक दिलाया है। और अब बात कबड्डी पर। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने एशियाई गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने थाईलैंड को और महिला टीम ने नेपाल को हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने दोनों हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 66-28 से हराया। 8 बार की विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम पुरुषों की स्पर्धा के 9वें फाइनल में पहुंच गई है और अपने 2023 के टाइटल को बचाने की कोशिश करेगी। भारत ने पहले हाफ में 37 पॉइंट्स किए जबकि थाईलैंड सिर्फ 18 पॉइंट्स ही बना सका। दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए 29 पॉइंट्स लिए जबकि थाईलैंड 10 पॉइंट्स ही बना सकी। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में अजेय रहते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी नेपाल पर 48-24 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। टीम ने पहले हाफ में 31 पॉइंट्स हासिल किए और ब्रेक तक 31-17 की मजबूत लीड ले ली। भारत ने दूसरे हाफ में 17 पॉइंट्स हासिल किए जबकि नेपाल को सिर्फ 7 पॉइंट्स मिले। भारतीय टीम रेडिंग और डिफेंस दोनों में बेहतर थी। पहले हाफ में टीम इंडिया ने 23 आउट पॉइंट्स, 4 बोनस पॉइंट्स लिए और 2 ऑल आउट किए। दूसरी तरफ नेपाल को 13 आउट पॉइंट्स और 3 बोनस पॉइंट्स मिले तथा उसने एक सुपर टैकल किया। दूसरे हाफ में भारत ने 12 आउट पॉइंट्स और 3 बोनस पॉइंट्स लिए तथा एक ऑल आउट किया जबकि नेपाल आखिरी 15 मिनट में सिर्फ 5 आउट पॉइंट्स और 2 बोनस पॉइंट्स ही कर पाया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: कबड्डी में भी भारत का लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस टूर्नामेंट में भी भारत ने फाइनल में जगह बना ली। अब भारत को कबड्डी से भी इस टूर्नामेंट में पदक की उम्मीदें होंगी। अब बात हॉकी पर भी कर लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल बी के मैच में मेजबान जापान को 3-1 से हराकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम ने हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त बना ली थी। पहले क्वार्टर में लालराम श्यामी ने ओपन प्ले से गोल करके स्कोरिंग की शुरुआत की जिसके बाद दूसरे क्वार्टर के आखिर में इशिका ने गोल किया। पहले हाफ में जापान भारत के ज्यादातर अटैक को रोकने में कामयाब रहा लेकिन भारत ने स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर मिले मौकों का फायदा उठाकर नियंत्रण बनाए रखा। तीसरे क्वार्टर में भारत ने अपनी बढ़त 3-0 कर ली जब नवनीत कौर ने सर्कल के अंदर बॉल दी, दाईं ओर मोड़ी और जापानी गोलकीपर के ऊपर से उसे दूसरे कोने में डाल दिया। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में जापान की शिहो ने टीम के लिए एकमात्र गोल किया। भारत ने अपनी बढ़त बनाते हुए 3-1 से जीत हासिल कर ली है। भारतीय टीम की ये इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है और हॉकी से भी कोई भी टूर्नामेंट हो भारतीय टीम को उम्मीदें होती है तो इस टूर्नामेंट में भी भारत को हॉकी से पदक की उम्मीदें बनी हुई है। और अब बात बैडमिंटन पर भी कर लेते हैं। भारत की तनिषा क्रस्टो ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पहले ही दौर में प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत 12वें

0: स्थान पर है। और अब बात क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। अफगानिस्तान और नेपाल के बीच मुकाबला आज खेला गया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 102 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम ने 16 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर 103 रन बनाकर ये लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया है। उधर भारतीय पुरुष टीम 28 सितंबर को अपना पहला मुकाबला खेलेगी और महिला टीम ने पहले ही स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है प्रतियोगिता में। भारतीय पुरुष टीम से भी उम्मीद होगी कि भारत को एक और प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
3: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी।

0: तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
0: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
2: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
0: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
6: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
3: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक

0: लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अंबेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
2: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को